ma tripulare tanù, vedete sacala san san. Kaushik suno, banda ehman, kuti da kala vasa di jacula kala, tuma hata kahu jo chaha ubara, kahita tapa bala rosho hamara. Sura samada karani karahi, kahina janava hi aap, nityaman rana payani, kayan karahi pralaap. परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु नकुल हि प्रसंसि कालहु डरहि न रण रघुवंशि विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि मृदु गुण बचन रघुपति के उखरे पटल रसु